0: तुम गवाह भी।
1: आनक एचार मथुरी रदमान सम्मान अरे क्यों मास चिंता न क्यों दान दाद चिमन रुचुरुच फैने ने फटूटक न तंबरी चांचो अरे फसक पुटक नुन्य बेन या वजान कसाव लेना बेन ताना रामजुन गुन्ना आज तो मने चनाओ फट्स मुंबनाओ कुर जोवे देश के तुझो सारा काजन रियमंट रच फटतो कुर जेले निफ सेना नज़ायद निफ्याई ना फिन जावे मिफ़मा मिल चाहे ताकतूर ए फंटाना मार जो सुफ़न्याफ़ नाम नो जान जाम फ़ुमारे ने मिर्चेर टोंट साइन सिम्टेट क्या न्यासा मनुक निमस्वांग उसा काफ़ चिकनी ना दोए इन रायमां नेफ न्यूफ़नी सारेट लिटातेरा गुज़ाम्बुला नुट्सेक ततोची निश्यान मच वुला टोंट पेला ताना चिकनु केंद्र ना चीपिक नेफ लासन दे नो इव्दियाना तपदांबा अनपेना नतुलुगो आर न्याम्बु नुन्यंगाम्बु रा मिस्त्याताओ अकांजो नतुलुगानाओ फामा मीर फिर लोट तिर्रिन चिकिती नेफ एच मतुली फा दलाना न्यंदाम रेशकुल नेफ लानाग कन्याद सैन राय नुएत न्यापतुर जानाग चिते मूर्सुम नाइक फिफम्याद बेंसेक रांपिच फुच न्याज इफिनरतान न्यातो वारत कई जानु कारमाई मेतु जिता निन कारत कांजो रेकुन रेजो फन लाला नुसकाना ना रांपिच वमाराई इस मांच फितु कान ना तो कई चिक्या आत कनिसा रेत जेमांदे दे अविल्या वकुफा अंदान रेलेबे अर्जेले मावु सदमा वक्फु निपटुंग ताकने फतो मार नीटा केटा तुंगा तुंगा फुच नियेन का दे मार केटा केटा नेफ एच मतुरी मिकिपी का मिकिपी अराजुमेना चीन दादा सिन रेद रेदन फिफा तफालो उचा लोट न्या यास तेब तेबन मिउंदान सुम्बनाय एतों पुकु बेता रायन
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvava.

0: बस तुम कुफा भी
1: अंदेवनी मालागासराय नु मालागासरेनी संजीसिंगे रेफंबाम तेनी ब्रेरेरी केफकसकस चिम तेन सुन तेन मालागास दिरंदुसी दिरने अंगान फिज में नकावे उन तुकातान सिमिस रेम तेन मालागासिन सुन वोजाने किन्याव अचाने नतफुन रशियन जेपा मांग तेन मालागास इज में नकाव रो मांगासियास चाइन निमामाल रो मालागासियावन वो फाटचिन्याव लेला सिनवावन रामतेन जास जेम्रिसकम रश्दिमीच उल्नाम्बान तेन निवाइन वतोन लाजन फमामेनताय जात्तेन लाजन जेन जवन मिस्येन चिकेतोर इन्नां तुइन आवन स्यावन उया मामाल रेफा चुआस दे हुन हुन सिशन तेन मालागास न्यानुआ वेंगाम आखो उतेलें चूला जनत सूचा चिया फेन पेन जस दियां दु न्याज जिसलिवन निवाई न्यांदी तुम न्यांदेवनी
0: शॉट तुम कुला शॉट तुम कुवाव

0: तुम क्लास तुम कुफाफी।
1: शूतु शूतसाने ने रजकले मंदे मंती तुम्हारे माता का इसके आराम पिस्ते तुम सब तुम क्यों चला रहे हैं? म्याना का टीम म्याना का काम रहे हैं टीम म्याना के अनु ना फिक्री जाने जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वाह ये जन के जान मंती तुम्हारे माता का इसके आराम ये जन के रिस्क सांप ना जब फिक्री जाने में मान लेकिन फिर से देसाना को दे मनारा का ना वो सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मनारा का नहीं दे ये देमरारे ना तो फिर तो सोम तांस मिरी जाने सेंस जब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु तो फटारा कौन सा ये ले फिर ना काफी ना जाने मार सु तो वो ना चार ले तीन रोपिया का के ना बुला चुना ये ना जाने
3: ये सूट सान ले वचने के ते माता कास्कियार सुनना ला को ले सूट तुम आते थी ये सेना बतार पे सूट जिस चीज में आप चलाते हैं सूट सान से ले सूट पे ना काफी ना टीम ना कर सारे तुम आते थी वाला सा चीज हम सोचो ची मोला ला सा चीज नहीं सेंच साझा मापा ये रेना जब यंजा मानता नहीं मापता ना जरा के से ते तंज ना तुम तुम्हारा ने
4: पना काफी ना सूट ले उल्ला ना दे तुम avany a Diego nakany tsireara dia verina ny Diego araka ny faniriny hoe te hiteta Madagasikara dia zotony mihitsy izany efa ankahirezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.